तस्वीरों में ही याद करते हैं। वहां ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें एक नहीं बल्कि कई बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, ऐसी सजाएं जो इंसानी उम्र से भी ज्यादा हैं। कहना आसान है, लेकिन उन्होंने दिहाइयों तक सिर्फ आज़ादी के ख्वाब के सहारे जिंदगी गुजारी। यकीनन बाहर उनके खानदान भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी इस इंतजार की कुर्बान कर दी। हर ईद पर अधूरा सजने वाला दस्तरखान, हर सालगिरह पर खाली छोड़ी जाने वाली कुर्सी और हर रात दरवाजे की आवाज पर उठने वाली पुर उम्मीद आंखें। फलस्तीन में सिर्फ कैदी ही नहीं बल्कि पीछे रह जाने वाले भी इस ना खत्म होने वाली जुदाई के असीर हो जाते हैं। हालिया दिनों में जब कैदियों के तबादले के माहिदों की बातें हुई और नामों की फहरिस्तें शाया हुई तो उन घरों में एक लम्हे के लिए दोबारा सूरज तुलू हुआ। खानदानों ने अपने बच्चों के कमरे साफ किए और सबसे खूबसूरत कपड़े तैयार किए, लेकिन इन माहिदों के पीछे एक बहुत जालिमाना कानून भी छुपा हुआ था। रिहा होने वाले बहुत से कैदियों पर अपनी सरजमीन पर वापस ना लौटने और दूसरे ममालिक में जिलावतन होने की शर्त आयद की गई। वो आज़ाद तो हो गए थे शायद, लेकिन अपनी इस सरजमीन और ख़ानदानों से दूर बिल्कुल अनजान ममालिक में रहने पर मजबूर होने की वजह से जो जज्बाती सदमा और भारी परदेसीपन का एहसास पैदा हुआ, उसने आज़ादी की खुशी को एक कड़वे दर्द में बदल दिया। कुछ नाम तो आखिरी लम्हे में फहरिस्तों से मिटा दिए गए और वो मुतवक्का मिलाप कभी ना हो सका। इसीलिए फ़लस्तीनी लोग खुश होते हुए भी हमेशा मोहताज रहते हैं। वो जानते हैं कि सबसे भारी मायूसियां सबसे बड़ी उम्मीदों के पीछे से आती हैं। बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमें जेलों की सूरत हाल के बारे में मुसलसल रिपोर्टें शाया करती रहती हैं। खचा खच भरी बैरकें, इलाज से महरूम मरीज, बदसलूकी और तशद्दुद के इल्जामात अक्सर दुनिया के सामने आते हैं। वहां से निकलने वाले साबिक कैदी, दिनों तक जारी रहने वाली तफ्तीश, नींद से महरूम रखे जाने वाली रातों और इस ना खत्म होने वाले दबाव की कहानियां सुनाते हैं। उनमें से अक्सर कहते हैं कि अंदर गुजरने वाले उन सालों के बाद उनके जिस्मों से ज्यादा उनकी रूहें थक गई हैं, क्योंकि इंसान को थकाने वाली चीज सिर्फ वो पत्थर की दीवारें नहीं है बल्कि बेयकीनी है और बाहर वालों की तरफ से एक दिन मुकम्मल तौर पर भूल जाए जाने का खौफ है। इसी भूल जाने के खौफ को शिकस्त देने के लिए फलस्तीनी कैदी अपने जिस्मों को भूख हड़ताल की भट्टी में डाल देते हैं। अंदर बंद इंसान के हाथ में बचने वाला आखिरी किला उसका अपना जिस्म होता है और जब वक्त आता है तो वो जिस्म सबसे बड़ा मुजाहिमती हथियार बन जाता है। महीनों तक जारी रहने वाली इन भूख हड़तालों को याद करें जो दुनिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती हैं। कोई सिर्फ इंसानी हालात के लिए, कोई अपने खानदान को एक बार देखने के लिए और कोई सिर्फ एक मुनसिफाना अदालत में पेश होने के लिए उन कोठरियों में पिघल गया। वो जेलें सिर्फ पत्थर से नहीं बनी हैं, वहां गुजरने वाला एक एक सेकंड इंतजार करना और याद करना खुद एक सजा बन जाता है। और इन सब तारीख कहानियों के बावजूद लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। एक माँ साल गुजरने के बावजूद अपने बेटे के कमरे को हाथ नहीं लगाती, उसकी धूल साफ करती है और बस इंतजार करती है। एक बाप अपनी बेटी के दरवाजे से दाखिल होने वाले दिन का ख्वाब देखता है। एक बच्चा अपने उस बाप की तस्वीर पर लगी पुरानी तस्वीर को देख कर बड़ा होता है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। फलस्तीन में आज़ादी का मतलब सिर्फ लोहे के एक दरवाजे का खुलना नहीं है, ये एक मिलाप है, एक आवाज़ का दोबारा सुनाई देना है और एक माँ का बरसों बाद पहली बार अपना सर तकिए पर सुकून से रखना है। सामीन, फलस्तीन को समझना सिर्फ गलियों की झड़पों और सुर्खियों में आने वाले वाकयात को देखना नहीं है, यह जेल की कोठरियों से उठने वाली उस भारी गहरी खामोशी को सुनना भी है। उन लोहे के दरवाजों के पीछे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अधूरी रह जाने वाली पूरी जिंदगियां छुपी